0: Morning, Mr. Johan.
1: Good morning.
0: Hi. नौकर ने खून किया आओ
1: ए अरे रे रे रे वो देखो हाय गाइस
0: आओ हाय
1: कैसी लग रही हूँ मैं बिल्कुल टीना जैसी ना
2: नंगा परी काकांग ketone lesu temen lo yo juga kok
3: mambengi balik ke toko malah kudanan yuk siki awake rasane greges banget padahal yang gue jasudan
2: mulane sedia habutop nang ring omah ke aku nek kesekudanan langsung minum habutop alhamdulillah awake sehat soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया। इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया।